0: बिल्कुल बहुत अपना राजन सैनी साहब भी पहले आए,
1: जी
0: गल्पाचार्य इसमें सुने थे, उस वेले फिर गुरिमान साहब भी
1: जी
0: ते मुकद्दर वीर जी भी आए, ते अपना वीर सिकंदर जी भी, क्या पता सारे जड़े है एक तो वध के
1: जी
0: एक हैगा, बहुत
1: बिल्कुल है ना
0: की कह रहे बुद्धिमान आप कह सकते इन्हों, बिल्कुल
1: जी
0: जड़ा हैगा, फिलोसफर
1: जी
0: भी है, बुद्धिमान भी है।
1: नहीं
0: ते
1: वैसे
0: मतलब
1: वहां
0: यार
1: हसम
0: ये हैगा भी
1: हसम जी तां रहे, चलो तुसी भी होल्ड रहे हो 6 मिंट 5 मिंट ते राजन
0: हाँ
1: सैनी साहब दा सुनेहा आ गया सी, कहिंदे भारत साहब जेकर टीचर हुंदे ना तां बच्चे दुखी हो
0: हाँ
1: जाने सी जी, बच्चिआं दी रुचि भी कहिंदे देखणी चाहीदी है जी, असीं सवेरे खबरां दा पेपर नहीं देणा जी, ते शुक्र है कहिंदे जी बस कीती है काल लई जी
0: देखो हर एक का अपना अंदाज होता, नहीं कोई गल नहीं, इस करके ना खबरसार भी होनी चाहिए है, फिर वो पता
1: ओ नहीं है सैनी साहब वो गीत
0: लग
1: बड़ा वैसे अपने दसिया औचला साहब ने लिखिया, कदे सौंदी नहीं सी साडी आवाज सुन के हुण 10 अख किवें लगदी है, ते वो गीत सीगा ना पुराना बहुत वधिया गीत है, वो भी लगी
0: हाँ जी
1: वाले
0: हाँ
1: कदे नहीं ओ सौंदे नहीं तेरी किवें अख लग गई
0: तेरी के आँख लग
1: जी
0: गई, वाह वाह सही गल है, इसे तरह ही है,
1: जी
0: ते बहुत वधिया सारे दे बड़े रोशन ख्याल हैं, बड़ा कुछ सीखने भी मिलता,
1: बिल्कुल
0: ते
1: है जी
0: जड़ा हम मैं उही गल्लां बातां हुण चलदियां पईयां सी, तुसी खबरां भी पढ़ रहे सी, मतलब कि देखो मैं या कई बारी बड़ी इन्नी हैरत हुंदी है वीर भुपिंदर जी, वी
1: जी
0: वड्डिआं दा इह हाल है ते दूसरे बेचारे की
1: की
0: करनगे ना
1: करनगे
0: आवाम
1: जी
0: दा की यार,
1: बिल्कुल
0: वी
1: बिल्कुल
0: वड्डे
1: है
0: जिहड़े हैगे ओ मनाइयां करन ते तुले होए है
1: जी
0: ना,
1: जी
0: भाई एवें कर देना असीं ओवें करना, भी दसो जिहड़ा हैगा
1: ये दुनिया दे
0: तुसीं
1: रोल
0: कहड़ी
1: मॉडल
0: पागल
1: ने
0: नूं
1: जी,
0: पै
1: देखो दुनिया दे रोल
0: हां
1: मॉडल ने
0: हाँ वही जी ना रोल
1: जी
0: मॉडल जिहड़े हैगे, जिहड़ा कि कहण दा मतलब जिन्हां नूं आपां टॉप गिण रहे, करीम ऑफ द
1: जी
0: वर्ल्ड जिहड़ा कह रहे हैं,
1: बिल्कुल है जी
0: करीम दा इह हाल है, ते दसो बाकी दा की होऊगा फिर,
1: बिल्कुल है,
0: ते ये
1: करीम नू
0: चीजां
1: उल्ली लग गई,
0: हैगियां
1: करीम
0: ठीक है। हाँ
1: नू उल्ली लग
0: जी
1: गई
0: हाँ
1: है
0: जी
1: जी हुण जी
0: हाँ जी हाँ जी, ते बाकी ये जिहड़ा हैगा देखो सोच विचार के चलना चाहिदा हैगा, जे आवाम नूं देखो मैं कई बारी बोला मैनूं बड़ी हैरत हुंदी भी जदों आवाम असीं जिहड़ा हैगा आवाम दे नाल ही एवें करांगे, उहनां नूं फिनिश करन ते तुर पर बाद च डंगरां ते
1: बिल्कुल
0: राज
1: है जी
0: करना, किसे राज
1: जी
0: करना डंगरां दे ते
1: असल
0: पशुआं
1: च
0: दे
1: ना
0: करना
1: मोहम्मद
0: राज।
1: जी हैगा इन्हां दा मकसद आबादी नू कंट्रोल करना, जिन्ने लोक घट होणगे उन्ना ही कंट्रोल वध कीता जा सकदा है, जो मर्जी करवाउणी चाहुंदे उन्ना कर सकदे ने जी, असीं लोक
0: हाँ
1: तां उन्हां लई
0: बिल्कुल
1: लई बस जिद्दां जानवर ही हैगे आ जी, उन्हां लई बंदे थोड़ी आ जी, ओह जिद्दां गेम खेडणी चाहुंदे अगले,
0: मतलब
1: उन्हां लई
0: बड़ी
1: इक गेम है
0: बड़ी
1: जी
0: हैरत होनी
1: जी
0: चाहिए। मैं भी तो मतलब कि जिहड़ा हैगा ना सिस्टमैटिकली चलो, जिहड़ा है कहिंदे कहिंदे
1: बिल्कुल है
0: प्लान बना के चलो, तो
1: जी
0: जिहड़ा हैगा फिर प्लान बना के तुसीं एक पासे कहिंदे प्लान जिहड़ा बना के चलना चाहिए, फिर चलो भी ना
1: जी
0: जिहड़ा हैगा तां ही है ना,
1: जी
0: ते बाकी जिहड़ा कहिंदे ना बिना प्लान तो भी कम हो जांदे पर रिजल्ट नहीं मिलदा, फिर भी बंदा जी जिहड़ा हैगा ना ओह
1: बिल्कुल
0: कम
1: है
0: नहीं
1: जी
0: सही ढंग ना हुंदा,
1: बिल्कुल
0: ते
1: है जी,
0: मैं एक गीत लेके आया सी, मैं कहा
1: जरूर
0: चलो
1: जरूर
0: जे
1: पाओ
0: आपां
1: पाओ
0: उस गाने
1: उसका
0: भी करिए, ते राजन
1: हाँ
0: सैनी
1: जी
0: साहब
1: हाँ
0: भी
1: जी
0: कह रहे सी चलो
1: बिल्कुल
0: यार
1: है जी,
0: तू फुल
1: उन्हां नू
0: फकीर
1: नींद
0: तू
1: नहीं
0: ना
1: आनी
0: कर
1: ओदा
0: तो
1: जी गीत सुने तो बगैर
0: जी जी ते लो जी, फिर मैं जरा तरी इजाजत
1: जी
0: सुना
1: आउन दियो जी।
0: जी।

छाई जी कदे भी नहीं आना, सानू जे दिया उड़ीका। छाई जी कदे भी नहीं आना, सानू जे दिया।

अज दा कोई पता नहीं, ना पता कोई कल दा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, मेरी मेरी करके।

जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, वो रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ता ही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, शरण जीत प्रेम हुण विकदा ए, शरण जीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए।

मैं तेरा पारदानी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। आ इक दूजे च समाइए नी आपां दोवें हाणो हाणी।

तेरे ते दा एहसान सारी जिंदगी मैं ढोआ, तेरे हासिया च हसा, तेरे रोने च रोआ।

सस्ते मुल दे वेखी। बुलिया खीरे सस्ते मुल दे वेखी, लाल तकड़ी विच तुल दे वेखी, फुल पे